0: बल्ल चुदा थाइङजी मिल छमी गो बल्ल नतिजा चुदा चोरौनु लदो चुदा
1: चु दुनिया जा था नला मल छमे त गो बल्ल नतिजा नहाल बिचमा तातो न छारो तात मेरो पारो रौ केटा कदे

0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: अरुणीको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छ गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक आवर सर्भिसेस डिलक्स रुम विथ एसी हट एण्ड कोल्ड वाटर एलईडी टिभी सेमिनार हल रेस्टुरेन्ट एण्ड बार फ्री वाइफाई पार्किङ एरिया फ्यामिलियर एण्ड जोयफुल इन्भाइरोमेन्ट कस्टमर सेटिस्फेक्सन इज आवर कन्जुगेन्स न्यू अरुणीको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छ गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक इमेल होटल अरुणीको @gmail.com contact 011-620-326-960-982293 new aruniko hotel and restaurant private limited chautara shankar subali nagar palika 5 sindhupur